0: kumbur ba mala ngog ma se ba kala la so ba ani me din na chi sen la so ma mbok tde ro te mi tisla ngo chen bo yibi mala ngo che ta bi ka sala te tang mi res wana kola te tar ta gi bi jin se yor ka se ni yor res mo khurung ngo che mo khurung te ngo yin ba ma se mo khurung te che ngo chen bo yin ba te ni ma mari mo di ngo te chen bo yibi jin se te la te ni ko ngo che se ba ba mo te yi ngo te chen bo yibi jin se ji ngo che se ba ba Dinner cotta genzic kitchen door. Dinner little tummy in Bakanki, a jitters. Tene yam petaganazo, Hassa dan, Chando Gumula, and in Garangarico, what that devi chitter, could take a meme many Hassa, Yana Chando, and tended me about the jury. Nanzo, Nema, Flodan Rovicasla, Tene Mombui, Andok Sajatin, Flodan Rovicasla, any Kanamo Bines and the Pijon, Hassan Mount Bines, and any take at Hassa, Hassa and Gilt and a big door. That dead double and so my engine. Call Hassa Marie, Mut, Kumurva. को चंदोया मारे चंदो से सजारे मेरा को मरवा तीन तो तामीज हासा तो चंदो की बात मेरा तापी का तामीज वो ना तेरा ताप वाले जिनसे की जोर का है ना योरिस तें तें भी गोनी जिनसे की जोर पर तेरा बगू मोटे को नीसा के येर ताप तेरा हासा हासा ये बा याना तेरा बगू मोटे नीसा के येर ते चंदो ये भी जिनसे तेरा तीन अने जी ताबाला गी तासना ना यी ताबाला चांबा तासना ना तेसो दे जमीन जीवल ताबर यान जीव के मीत जिला ताबाते पे ना ड्रोग जीपी को पाले ला अने पाले मजे ने थे का तो ड्रो से किंदुआ तेंगो माते चरना पाले ते ड्रो तुझे जीव से विजन जीव तेला जे ड्रो तुझ मीत आने ड्रो ड्रो ड्रो सा से किंदुआ अने च तने यहाँ में न राजन से जो ताबे पेचा के न मैं पाव तने ला ताक से माना ये मैं धर्मा पामें के तेरे सो ला वादा मैं शुक्षिम बोयों के तेरे सो ला यागे ताबे आये मैं जंबो सांबा जंबो तेरे सो ला लाता बे मैं ये बात तने ला छेता बे आ मैं जुबो देबो यों के तेरे सो ला ट्रेव ताबे तने तेरे सो ताबे ये ना को राजन से शुद्धि भी गुण तामी है अने यहाँ छाही चेंजी मीन छाही ताबे तने योर पेचा ना गीज नेची मैं कुछ गुण तेरे गीज नेची मजे ने गीज तेरे सो कचाक कोंबा ची चांडो इतिसल छाजी ते कचाक कोंबा ची छाही ची रे वे जंगा तो कचा छाती से ना देदा बे ची रे से दिले अनि छाही चेंज मी दे छाही ल ताबा ता लासु बा तंजे ग्रिस चे मा मबो यरे देसो ते तामी गनो ने ता तामी जिडर ते मी दे ता तरी तिसे जो वांगी कसे बे पिन नांदे ते चांदना ने याजी अनि जिल ने जंबा यंदे ता मी दा छिक छेबर आ तिने मी दा छिनि ग मचनो लासु बा तिसो जो कोनी इने जंबा यंदे सोजी जिमान रे खियो तिने ता तरी ग लोंदिन दिगु नोना जाई छानि अनि मीला तनि निमिद तामि नि बगन तामि तनि मीना दोसि गोनि अनि देजे दा जिजिनि बाते सोते पेजे दा जानि अनि मसो ता देजि कि बारे तिन दल ता तिरिंग सोटि जि नांदे दा जनि मसो संगी चागि जि कतनि जुआ गायो से बाईना आ तनि तामि ला मसो तनि तामि देजे दा जिजिनि यो बारा तामि ला देजे दा जिजिनि यो बारे तिमि तिसला तामीन द्वेजल ता जिजिनि जि छेपर द कले यास बेजे ग थोनी सही जो छि तामीन द्वेजे द जिजि ग छेपर के कले ग यास आ देजिस तने निंगबा तने निंगबा द गारे से सबाई ना तने निमि यो या निमि देला आ निमि द्वेजल यो छि आ निमि जिजे यो बारे तने निमि द्वेजे द जिजिनि जि यान छेपर द कले ग यास त तोआ निबाई तोआ समा द गाय से दिले तने तामी द जिजिनि हि बि गजल जिजप Raga Raja the Jan with Jesse G. Scarra the Tracky Tributes, G. Trips, Yana G. Trips, Jinse Carbs. G. Shed the Jinse Hit, you pick the Mintes or G. Trips ever is. Tinel Troa, or than the same. Dessen calls some other name, Sagitinaro. Tene, from the Jiman and Jayon, Taki Dele.
1: Then Cindy, Zonji Ta, he hit Daniel, Janso Pinto Ta, Jiso, the Jinny, Jonam Ta, Diamo.